तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले

सहसनजाय स निरंजन हुए जे को मान जान मन को मन्ना मार्ग ठाक न पाय मन्ना पसम प्रगट जाय मन्ना मगन जला पंथ मन्ना धन से तीसर मान दे।

चर्पणिछान्द्वा प्रसाद सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्म सर्वं धर्मं सर्वं जीवता सर्वं मुक्ता ऋषावल संत्वा प्रसाद नमो दर्कनासे सदा प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्भाव मुदे अनंगी अनामे तरभंगी तरकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्र ना तात न मात न जात न पात नृसाक श्री का मितो मी का सदा प्रभा अजय जाय भगवती शांतवा प्रसाद के जहर जहूर है के हाजर हजूर है मेसर सलाम है समस्तल कलाम है के सहब दमाक है के संचराग है के कामरा करीम है के राज कर रहीम है के रोजी देहद है के राज कर हिंद है करीम उल कमाल है के सन जमाल है गनीम उल खराज है गरीब उल नवाज है हरी फल शिकान है रासल मिकान है कलंकं बरणास है समस्तल नवास है गंजला गनीम है रजाय कर रहीम है समस्तल जुबा है के साहब किरा है के नरकं बरणास है बहस्तल नवास है के सर्वलोकवन है मेसर वन है तमामंत मीजा समस्तला जीज है परम परमीस है समस्तला दीश है देसुला लेख है मेसुला भेख है जमींदर जमा है मीकुल माह है करीमुल कमाल है के

सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुरु कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी अजन सत पाए वे प्रश्न आया लभ लोभ अंका चुका सतगुरु मिला पाया कह नानक जिसनु आत उठा तेने अमृत गुर ते पाया।

सच दयावै सचो तियावह जां तुद पावै गुरमजना बुझावहि यो सस बना का खसम है जे बख्शे सो जन्म पावहि कह नानक सच सुहे।

दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ दोलना ते रखो प्रभु नानक देकर हाथ तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम्हें सजन सुहेले रखो रखन हर दयाला नानक करके गोल।

ते प्रधान ने वावे प्रभ मत्था हर जस लिखे बेअंत सो हे से हत्था चन पुनीत पवित्र चाले प्रभ पत्था संता संग उदार सगला दुख लत्था श्लोक भावी उदोत करण हर रमरंग संजोग पूर्ण है गोपाल दास भेटंग सफ नानक सो मुहूर्त है कीम न सका पाए मुख मिति हूं बाहरे नानक सा वेल री परवान जित मिलन मिलन मिलंदड़ो माँ प्री पौड़ी सा वेला कहो कौन है जित प्रभु को पाए सो मूर्त भला संजोग है जित मिलै गुसाई आठ पहरा त्याय कै मन इच पुजाई वड्डै भाग सत्संग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पतित पनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है शरण सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरणा पास नथड़ो दुख ताप नानक प्रभ पे खंदिया पौड़ी मिल लै हो दया टह पै दुआरिया रख ले हो दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत वशल तेरा बिरद हर पतित उधारिया तुझ बे नाही कोय बिनो मोहे सारिया कर गहे ले हो दयाल सागर संसारिया श्लोक संत उदर दयाल आसरंग गोपाल कीर्तन है निर्मल संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटी काम सीतुल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो पह मन कोट न आवे मूल संचया नाम तन संजना स्यो संग पाइय वड पुन आठ पह हर त्याय हर जस नित सुन श्लोक दया करनंग दुख हरनंग उचरंग नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत न माया पाहे बलंदड़ी बुझ गए रखंदड़ो प्रभु आप जिन उपाय मेदनी नानक सो प्रभु जाप पौड़ी जा प्रभु पह दया न ब्यापै माया कोट अग्गा गए नास हर इक त्याया निर्मल पहे श्री जंतूरी नाया मन तन पहे संतोख पूर्ण प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोक कुल सवाया श्लोक गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समर्थ गुर गुरु नानक पत उदाहरण है भौजल बिखम असगाह गुरे बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरनी लग्या पौड़ी तन तन गुरदेव जिस संग हर जपे गुर कृपाल जब पहता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीच हो उच्च थप्पे काट सिलक दुख माया का लीने अपदसे गुण गाय बेअंत रसना हर जसे श्लोक दृष्टांत एको सुनियंत एको वर्तांत एको नर हर हे नाम दान न जाचंत नानक दयाल पुरख कृपा करहे हिक सेवी हिक समला हर इक स पह अरदास नाम वखर तन संचिया नानक सच्ची रास पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण इक ए हो सब किश आपे आप दूजा कहा के हो आप करो प्रभ दान आपे आप।

मन तर सह चरनारे पावो दान ठीठ होए माघो मुख लागे संतरे नारे जन नानक को गुर कृपा धारी प्रभ हाथ दे निस्तारे। सूही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मांगन बहुता महल न पावे कहतो बहुता जो प्रेम ने तिनकी रीसा कूड़े कूड़े मूर्ख की हाठी सा रहाओ भेख दिखावे सच ना कमावे कहतो महली निकट न आवे अतीत सदाए माया का माता मन नहीं प्रीत कह मुख राता कहो नानक प्रभिनो सुनी जा कुचुल कठोर कामी मुक्त की जा नरसन देखे की बड़ियाई तुम सुखदा ते पुरख सुभाई रहाओ दूजा। सूही महला पंजवा बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसरे अपना बूझा ना एना माया मोह रंग लपटाना रहा लोभ लहर को बिक से फूल बैठा साजना का दर्शना डीठा कबहु ना समझा ज्ञान गवारा बहरे बहरे लपटे झंझारा रहा बिखे नाद कर्ण सुन पीना हर जस सुनत आलस मन कीना दृष्ट ना ही रे पेकत अंधे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ ओह नानक प्रभक्स क्रीजै कर कृपा मोहे साध संग दीजै तो किच पाइया जो होइया रे ना जिसे बुझाए तिस नाम लैना रहाओ। सूही महला पंजवा कर मह ठाकुर नदन आवै गल मह पाहन लै लटकावै पर मैं भूला साखद फिरता नीर बेरो लै खप खप मरता रहाओ जिस पाहन को ठाकुर कहता ओह पाहन लै उठ को डुबता गुनहेगार लून हरामी पाहन नाव न पार गिरामी गुरमिल नानक ठाकुर जाता जल थल महिल पून बेदाता। सूही महला पंजवा लाल नराव्या कवन गतिरी सखी बताओ मुझे मतीरी सुहब सुहब सुहवी अपने प्रीतम कै रंग रती रहाओ पाव मिलो वो संग नैम पतीरी जहाँ पठाओ जाओ ततीरी जप तप संजम देव जतीरी एक निमिक मिलाओ मोहे प्राण पतीरी मान तान अहंभुद हतीरी सा नानक सोहागवतीरी। सूही महला पंजवा तू जीवन तू प्राण धारा तुझी पेख पेख मन साधारा तू साजन तू प्रीतम मेरा चितह न बिसरे काहू बेरा रहाओ बैखरी हो दासरो तेरा तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा कोट दास जाके दरबारे निमिक निमिक बसै तिन नाले हों किच नाही सब किच तेरा ओत पोत नानक संग बसेरा। सूही महला पंजवा सूख महल जाके ऊच दुआरे ता मह वासहे भगत प्यारे सहज कथा प्रभ की अत मीठी विलै काहू नेत्रो डीठी रहाओ तह गीत नाद खारे संगा ऊहा संत कहे हर रंगा तह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत वरखा गोहज कथा गुर ते जानी नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा जाके दर्श पाप कोट उतारे भेटत संग पव झुल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हम को हर नाम चितारे रहाओ जाका शब्द सुनत सुख सारे जाकी टहल जमदूत बेदारे जाकी तीर के इस मनहे सुधारे जाके सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे सनन नानक तिन तिन सद बलिहारे। सूही महला पंजवा रहन न पावे सुर नर देवा उठे सिधारे करे मन जन सेवा जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ बाद साह साह वापारी माना जो दीसै सो काल हे खन्ना कूड़ा मोहे लपटे लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निदान नानको करो दात नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा घट घट अंतर तुम्हें बसारे सगल समगरी सूत तुम्हारे तू प्रीतम तू प्राण अधारे तुम ही पेख पेख मन बिगसारे रहाओ अनक जोन प्रामे प्रामे प्रामे हारे ओट गही अवसाद संगारे अगम अगोचर लख अपारे नानक सिमरै दिन रह नारे। सूही महला पंजवा कवन काज माया वड़ियाए जाको बिनसत बाना काय हुस्पना सोबत नहीं जाना चेत व्यवस्था मह लपटाना रहाओ महा मोहे मोहो गावारा पेखत पेखत ऊट सिधारा ऊचते ऊचता का दरबारा के जंत में ना है ओ पारा दूसर हुआ ना को होई जप नानक प्रभ एको सोई। सूही महला पंजवा सिमर सिमर ता का हो जीवा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा सोहर मेरा अंतर जामी भगत जना कै संग स्वामी रहाओ सोने सोने अमृत नाम ते आवा अट पह तेरे गुण गावा पेख पेख लीला मन आनंदा गुण अपार पर ब्रह्मानंदा जाके सिमरन कश पाओ न ब्यापै सदा सदा नानक हर जापै। सूही महला पंजवा गुर कै बचन

अदूता, ऐन से जाग है कब ये न सूता। जागत जाग रहे लिवलाई, गुर परचे तिस काल ना खाए। अतीत पय मारे बहराई, प्रणवत नानक तह लिवलाई। द्वादशी दया दान कर जाने, बाहर जातो पीतर आने। बरती बरत रहे न काम, जपा जाप जपे मुख नाम। तीन पवन में एको जाने, सब सुच संजम साच पछाणे। तीर्थ तरवर समुंद किनारे, अमृत मूल शिखर लिवतारे। डर डर मरे न बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पद खोए। डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाणे। चौदस चौथे थावे लै पावे, राजस तामस सतकाल समावे। ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे। चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मांड रहा लिवलाए। अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बुझो ज्ञानी शब्द विचार। ससियर गगन ज्योत लोई, कर कर वेख्या करता सोई। गुरते दिसे सोते सिहि माए, मन भूले आवे जाए। कर दर थाप थिरथान सुहावे, आप पछाणे जा सतगुर पावे। जय आसा तै बिन सुविनासा, फूटे खप्पर दुबदा मनसा। ममता जालती रही उदासा, प्रणवत नानक हमता के दासा। बिलावल महला तीजा वार सतकर्म, बिलावल महला तीजा वार सतकर दसवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आदित वार याद परखै सोई। आपे वरते अवर न कोई, ओत पोत जग रहा परोई। आपे करता करे सो होई, नाम रते सदा सुख होई। गुरमुख विरला बूझे कोई, हृदय जपनी जपो गुणतासा। हर अगम गोचर परंपर स्वामी, जान पागलग त्यावो हो दासन दासा। रहाओ सोमवार सच रहा समाए, तिसकी कीमत कही न जाए। आख आख रहे सब लिवलाए, जिस देवे तिस पल्ले पाए। अगम गोचर लखिया ना जाए, गुर के शब्द हर रहा समाए। मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर तंदे लाया। आप बजाए सोई बूझे, गुर के शब्द दर कर सूझे। प्रेम भगत करे लिवलाए, होमे ममता शब्द जलाए। बुधवार आपे बुधसार, गुरम करनी शब्द विचार। नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे होमे मल खोए। दर सच्चे सद सोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए। लाहा नाम पाए गुर, लाहा नाम पाए गुरद्वार। आपे देवै देवनहार, जो देवै तिसको बल जाइए। गुर प्रसादी आप गवाइए, नानक नाम रखो अरतार। देवन हारे कौ जयकार, वीर वार वीर परम पुलाए। प्रेत भूत सब दूजै लाए, आपो पाए कर वेखै वेका। सबना करते तेरी टेका, जी जन तेरी सरनाई। सो मिलै जस लह मिलाई, शुक्रवार प्रभ रहा समाई। आपो पाए सब कीमत पाई, गुरमुख होवै सो करे विचार। सच संजम करनी है कार, वारत नेम निता प्रत पूजा। बिन बूजे सब पाओ है दूजा, सुनिचर वार सुन सास्त विचार। होमे मेरा परमे संसार, मनमुख अंधा दूजे पाए। जमदर बाधा चोटा खाए, गुर प्रसादी सदा सुख पाए। सच करनी साच लिवलाए, सतगुर सेवे सेवड़ भागी। होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सहज सुभाए। तू सुखदाता लहे मिलाए, एकस्ते दूजा नाहीं कोए। गुरमुख बूझे सो जी होए, पंद्रह थिति तै सतवार। महा रुति आव है वार वार, दिन सरैन तिवै संसार। आवा गौण किया करतार, नहचल साच रहा कलतार। नानक गुरमुख बूझे को शब्द विचार। बिलावल महला तीजा, आद पुरख आपे सिरट साजे। जी जंत माया मोए पाजे, दूजे पाए परपंच लागे। आवे जाहि मरे अपागे, सतगुर भेटिए सोजी पाए। परपंच चूकै सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख। ताके मन वसिया प्रभ एक रहाओ। सृष्टो पाए आपे सब वेखे, कोई न मेटै तेरे लेखे। सिद्ध साधक जे को कहे कहाए, परमे पूला आवे जाए। सतगुर सेवे सो जन बूझे, होमे मारे ता दर सूझे। एकस्ते सब दूजा हुआ, एको वरते अवर न बिया। दूजे तेज एको जाने, गुर कै शब्द हर दर निशाने। सतगुर भेटे ता एको पाए, विचों दूजा ठाकर हाए। जिसदा साहिब डाडा होए, तिसनू मार ना साके कोए। साहिब की सेवक रहे सरनाई, आपे बक्से दे बड़ियाई। तिसते ऊपर नाहीं कोई, कौन डरे डर किसका होए। गुरमती सांत वसे शरीर, शब्द चीन फिर लगे न पीर। आवे न जाए ना दुख पाए, नामे राते सहज समाए। नानक गुरमुख वेखे हदूर, मेरा प्राव सद रहा परपूर।

एक सेव एक परम पुलाए, आपे करे हरे आप कराए, एको वर्तै वरना कोय, मन रोस कीजै जे दूजा होए। सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचे साचे विचारी, थिती वार सब शब्द सुहाए, सतगुर सेवे ता फल पाए, थिती वार सब आवे जाहे, गुर शब्द निहचल सदा सच समाहे, थिती वार ता जा सच राते, बिन नावे सब पर मैं काचे, मन मुख मर है मर बिकती जाहे, एक न चेते दूजे लो वाहे, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्दे क्यों पाए पार, आपो पाए उपावन हार, आपे की तोन गुर विचार, बहुते पेख करह पेखतारी, पाप पर परमे काची सारी, ऐथे सुख न आगे होए, मानमुख मोए अपना जन्म खोए, सतगुर सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच महल पाए, आपे पूरा करे सो होए, एह थिती वार दूजा दोए, सतगुर बहचू अंध गुबार, थिती वार सेवै मुगद गवार, नानक गुरमुख बूझै सो जी पाए, इकत नाम सदा रहा समाए, बिलावल महला पहला, शांत दखनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मुंद नवेलड़िया गोई लियाई राम, मटकी दार तरी हर लिवलाई राम, हर लिवलाए हर स्यो रही गोयल, सह शब्द सिगारिया, कर जोड़ गुर पै कर बिनंती, मलहो साच प्यारिया, तन पाए भगती देख प्रीतम काम, क्रोध निवारिया, नानक मुंद नवेल सुंदर देख पिरसा धारिया, सच नवेलड़िए जोबन बाली राम, आओ न जाओ कही अपने सहनाली राम, नहाय अपने संगदासी मैं भगत हर की पावै, अगाध बोध कथ कथिए सहज प्रभ गुण गावै, राम नाम रसाल रसिया रवे साज प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया, नानका विचारिया, श्री तर मोहिड़ी पिर संग सूती राम, गुर कै पाए चलो साच संगूती राम, तन साच संगूती हर संग सूती, संग सखी सहेलिया, एक पाए एक मन ना वसिया, सतगुरु हां मेलिया, दिन रहन घड़ी ना चसा विसरे, सा सास निरंजनो, शब्द जोत जगाए दीपक, नानका पौ भंजनो, जोत सबाइड़े त्रि भवन सारे, राम कट कट रव रहा अलख अपारे, राम अलख अपारे अपार साचा, आप मार मेलाइए, होमे ममता लो जालो, शब्द मेल चौकाइए, दर जाए दर्शन करी पाणे, तार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति, नानका उरतारिया, बिलावल महला पहला।

दुखा अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत तरिए संसार, बड़ पागी पाइए पुरख अपार रहो, जो जन करे कीर्तन गोपाल, तिसको पोए न सके काल, जग में आया सो परवान, गुरमुख अपना खसम पछाण, हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्माद, सदा है और जाने भगवंत, पूरे गुर का पूरन मंत, हर तन खाट किए लिए किए पंडार, मिल सतगुर सब काज सवार, हर के नाम रंग संग जागा, हर चरनी नानक मन लागा, गौंड महला पंजमा, पाव सागर बहुत हर चरण, सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही हम पंथ, महाविचार पंच दूते मंथ, तो शरणाई पूरन नाथ, संत जंत अपने को दीजे हाथ रहो, सिमरत सहस्र वेद पुराण, पार ब्रह्म का करे वख्याण, जोगी जति वैष्णो रामदास, मित नाही ब्रह्म विनाश, कारण पला करे शिवदेव, तिल नहीं बूझे अलख पेव, प्रेम भगत जिस आपे दे, जग में बिरले कही के, मोहि निर्गुण गुण कछु नाही, सर्ब निधान तेरी दृष्टि माए, नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरदेव, गौंड महला पंजमा, संत का लिया तरत विधारो, संत का निंदक आस दे टारो, संत को राखो अपने जी नाल, संत उधारो तत् खिण ताल, सोई संत जय पावै राम, संत गोविंद के एके काम रहो, संत के ऊपर दे प्रभात, संत के संग वसे दिन रात, सास सास संते प्रतपाल, संत का दुखी रास दे टाल, संत की निंदा करो कहो करो ना कोए, जो निंदे तिसका पतन होए, जिसको राखे सिरजनहार, चख मारो सगल संसार, प्रभ अपने का पया विसास, जियो पिंड सब तिसकी रास, नानक को उपजी परतीत, मनमुख हार गुरमुख सद जीत, गौंड महला पंजमा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत पाप बिलायन, रहो नारायण सब माय निवास, नारायण कट कट प्रगास, नारायण कहते नरक न जाए, नारायण सेव सगल फल पाए, नारायण मन माया धार, नारायण बोहित संसार, नारायण कहत जम पाग पलायन, नारायण दंत भांडे डायन, नारायण सद सद बखसेंद, नारायण कीनो सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप, नारायण साध संग नारायण, बारंगवार नारायण गायन, वास्त गोचर गोल मिरलही, नारायण ओट नानक दास गही, गौंड महला पंजमा, जा को राखे राखण हार, तिसका अंग करे निरंकार रहो, मात गर्भ में अगन नंजो है, काम क्रोध लोभ मोह न पोहे, साध संग जपे निरंकार, निंदक के मुँह लागे शार, राम कवच दास का सन्हो, दूत दुष्ट तिस पोहत नाही, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए, जो जो सरन पया हर राए, जो दास रखे अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अंकार, ओए खिन में रुड़ता खाको नाल, है भी साचा हो बनहार, सदा सदा जाई वलिहार, अपने दास रखे किरपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गौंड महला पंजमा, आचार्य कथा महानूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहो, ना इहो बूढ़ा न्यो इहो बाला, ना इस दुख ना ही जम जाला, ना इहो विनसे ना इहो जाए, आद जुगादि रिया समाए, ना इस उसन नहीं इस सेत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरख नहीं इस सोग, सब कुछ इसका इहो करने जोग, ना इस वाप नहीं इस माया, इहो परंपर होता आया, पाप पुन का इस लेप न लागे, कट कट अंतर सद ही जागे,
तीन गुणा एक सख्तो पाया, महा माया ताकी है शाया, अचल छेद भेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ताकी गतमित कछु न पाए, नानक ताके वल बल जाए। गौंड महला पंजमा, संतन के बल हारे जाओ, संतन के संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किलबिक सब गए, संत सरन बड़ भागी पए, राम जप तक कुछ बिघन न व्यापे, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहो, पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करे रवाल, काम क्रोध स्तंते जाए, राम रतन बसे मन आए, सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रों सच बपार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तोर। राग गौंड अस पदियां महला पंजमा, घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर नमस्कार पूरे गुरदेव, सफल मूर्त सफल जा की सेव, अंतरयामी पुरख विधाता, आठ पैर नाम रंग राता, गुर गोबिंद गुरु गोपाल, अपने दास को राखण हार रहो, पातशाह सा अमराओ पति आए, दुष्ट अहंकारी मार पचाए, निंदक के मुख कीनो रोग, जय जयकार करे सब लोग, संतन के मन महानंद, संत जपे गुरदेव भगवंत, संगत के मुख उज्जल पहे, सगल थान निंदक कह गए, सा सह जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर भी परवाहे, सगल पह मिटे जा की सरण, निंदक मार पाए सब तरण, जन के निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पहर जन एक तिहाए, जमुआ ताके निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अंकारी, जल पल माने निंदक बेकारी, गुर के सिख सत गुरु तिहाया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत वचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ सर पर जाए, ने तरिया सत गुर तार तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कौ नानक तिस गुर बल्ले हारी, जाके सिमरन पैज सवारी। राग गौंड वाणी भगता की, कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद, संत मिले कुछ सुनिए कहिए, मिले संत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है रहो, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बड़े विकारा, बिन बोले क्या करे विचारा, कौ कबीर शोचा कट बोले, भरिया होए सो कबू न डोले। गौंड नरो मरे नर काम नावे, पशु मरे दस काज सवारे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे रहो, हाड जले जैसे लकड़ी का तूड़ा, केस जड़े जैसे घास का पूड़ा, कौ कबीर तब ही नर जागे, जम का ढंड मूंड में लागे। गौंड आकाश गगन पताल गगन है, जो जिस गगन रहाई ले, आनंद मूल सदा पर खोतम, कट बिन से गगन न जाई ले, मोए बेराग पयो, इहो जीव आए कहाँ गयो रहो, पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहाँ ते कीन रे, कर्म बंद तुम जियो कहत हो, कर्मे जिनको दीन रे, हर में तन है तन में हर है, सर्ब निरंतर सोए रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गौंड वाणी कबीर जी की, घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पूजा बांध पिला कर डारियो, हासी क्रोप मूंड में मारियो, हस भाग के चीसा मारे, या मूरत के हों बलिहारे, आए मेरे ठाकुर तुमरा जोर, काजी वकबो हासी तोर, रहो रे महाबत तुज डारो काट, इसे तो रहो कालो चाट, हस न तोरे तरे त्यान,
वहाँ के हृदय बसे भगवान, के अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट लै लै नमस्कारे, वो जी नहीं काजी अंधारे, तीन वार पतिया पर लीना, मन कठोर अजूना पतीना, कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद में जानकी जिंद, गौंड ना ए मानस ना ए दियो, ना एहो जति कहावे से हो, ना एहो जोगी ना अवधूता, ना ए समाय न काहूं पूता, या मंदिर में कौन बसाई, ताँ कांत न को पाई, रहाओ ना एहो गिरही ना उदासी, ना एहो राज न पीख मंगासी, ना इस पिंड तन रख तुराती, ना एहो ब्राह्मण ना एहो खाती, ना एहो तपा कहावे सेख, ना एहो जीवे ना मरता देख, इस मरते को जे को रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे, गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया, कौ कबीर हो राम की अंस, जस कागद पर मिटे न मांस, गौंड टूटे तागे निखुटे पान, द्वार ऊपर चिलका वै कान, कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया चिर चढ़ वो काल, यो मुंडिया सगलो द्रब खोई, आवत जात नाक सर होई, रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वाका मन राता, नर की लरकन कह बो नाही, मुंडिया अंदन तापे जाए, एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट, मुंड पलोस कमर वद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी, मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूढ़त की टेक, सुनंदली लोई बेपीर, इन मुंडियन पज सरन कबीर, गौंड खस मरे तो नार न रोवे, उस रखवारा और होवे, रखवारे का होए विनाश, आगे नर की हाँ भोग विलास, एक सुहागण जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी, रहाओ सुहागण गल सोहे हार, संत को बिख बिक से संसार, कर श्रृंगार बहे पखियारी, संत के ठिठकी फिरे विचारी, संत पहागो पाछे परे, गुर प्रसादी मारो डरे, साकत की हो पिंड प्रायण, हमको दृष्ट परे त्रिक डायण, हम तिसका बो जान्या पियो, जब हुए कृपाल मिले गुर दियो, कहो कबीर अब बाहर परी, संसारे के आंचल लरी, गौंड ग्रह सोबा जा केरे नाही, आवत पहिया खुदे ताई, बाके अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागण लागे दोख, तन सुहागण महापवीत, तपे तपी सर डोले चीत रहाओ, सुहागण किरपन की पूती, सेवक ताज जगत क्यों सूती, साधु कै ठांडी धरवार, सरन तेरी मोको निस्तार, सुहागण है अत सुंदरी, पग नेवर शन कशन हरी, जौ लग प्राण तौ लग संगे, ना इंत चली वेग उठ नंगे, सुहागण पवन त्रैलिया, दसठ प्राण तीरथ रस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे, बड़े पोवत राजे है शेदे, सुहागण रोवार न पार, पांच नारद के संग विधवार, पांच नर्द के मिटबे फूटे, कौक वीर गुर किरपा छूटे, गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे, ना बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल ना टिकावे, साधु बिन ऐसे अब गत जावे, जारो तिसे जो राम न चेते, तन मन रमत रहे वह खेते, मैं खेते रहो, जैसे जलहर बिना नहीं जिमी नहीं बोई, सूत बिना किसे मणि परोई है, कुंडी बिन के अगंठ चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अभिगत जाइए, जैसे मात पिता बिन वाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, कौन बिना कैसे असमान, साधु बिन ना ही दरबार, जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागण ताजो हेरी, कहे कबीर के कर करण, गुरमुख होए बोहर नहीं मरण, गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छोटे, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त नहीं बो पावे, कूटन किसे करो संसार, सगल भूलन के माही विचार रहो, नाचन सो जो मन से नाचे, झूठ न पतिए परचे साचे, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवार, बजारी सोजो बजारे सोदे,
पांच पलीते को प्रभु दे। नौ नायक की भगत पछाण है, सो बजारी गहम गुर के माने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्र के जत नाम उचरे। कौक वीर हम ऐसे लखन, धन गुरदेव अत रूप बिचखण गौंड। धन गोपाल धन गुरदेव, धन नाद भूखे कवल टहकेव। ओए धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलवो सारंग पाणी। आद पुरख ते होए अनाद, जपिए ना मन के साध रहाओ। जपिए नाम जपी है अन्न, अबे के संग नीका वन। अन्य बाहर जो नर होवे, तीन पवन में अपनी खोवे। छोड़े अन्न करे पाखंड, ना ओ सुहागण ना हो रंड। जग में वक्ते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी। अन्य बिना न होए सुकाल, तजी अन्न न मिले गोपाल। कौक वीर हम ऐसे जानिया, तन अनाद ठाकर मन मानिया। राग गौंड वाणी नाम देव जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। असमेद जगने तुला पुरख दानी, प्राग स्नाने तो ना पूजे हर कीरत नामा। अपने रामे पजरे मन आल सिया रहाओ। गया पिंड परता बनार से असवस्था, मुख वेद चतर पढ़ता। सगल धर्म अचेता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता। खट कर्म सहत रहता, शिवा सख्त सबंधन। मन छोड़ छोड़ सगल भेदन, सिमर सिमर गोविंद भजनामा। तरस पव सिंध गौंड, नाद पर में जैसे मिर गाए। प्राण तजे वा को ध्यान न जाए। ऐसे राम ऐसे हेरो, राम छोड़ चित अनत न फिरो रहो। ज्यो मीना हेरे पछुआरा, सोना गढ़ते हिरे सुनारा। ज्यो बखी हेरे पर नारी, कौड़ा ढारत हिरे जुआरी। जय जय देखो तै तै रामा, हर के चरणित त्या वै नामा। गौंड, मोको तार लै रामा तार लै। मैं अजान जन तर बे न जानो, बाप बेठ लवा दे गढ़ाओ। नरते सुर होए जात निमक मैं, सतगुर बुद्ध सिख लाए। नरते उपज सुर्ग को जीत्यो, सो अफगत मैं पाई। जहाँ जहाँ तो नारद टीके, नैक टिका वो मोहे। तेरे नाम अभिलभ बहुत जानी उदरे, नामे की निज मत ए गौंड। मोए लागती ताला बेली, वछरे बिन गाय अकेली। पानिया बिन मील तलफे, ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ। जैसे गाय का वाछा छूटला, तन चोखता माखन कोटला। नाम देव नारायण पाया, गुर पेट ते अलख लखाया। जैसे विखे हेत पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी। जैसे तापते निर्मल कामा, तैसो राम नामा बिन बापरो नामा। राग गौंड वाणी नाम देव जियो की, घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर करत मिटे सब परमा, हर को नाम ले उत्तम धर्मा। हर हर करत जात कुल हरी, सो हर अंदले किला करी। हरे नमस्ते हरे नमे, हर हर सकर्द नहीं दुख जमे। रहाओ हर हर नाक्स हरे प्राण, अजय मल कियो वैकुंठे तान। सुआ पड़ावत गण का तरी, सो हर नैणों की पोतरी। हर हर करत पूतना तरी, बाल कातनी कपटे परी। सिमरन द्रोपद उसोतु तरी, गौतम सीता सिला निस्तरी। केसी कंस मथन जिन किया, जी दान काली को दिया। प्राण में नाम है सोहरी, जास जपत पै अपदा टरी। गौंड, पैरों पूत सीतला तावे, खर वाहन ओ शार उड़ावे। हो तो एक रमैया ले हो, आन दे बदला बन दे हो राहो। शिव शिव करते जो नर तिहावे, बर्द चढ़े डोर टमकावे। माँ माई की पूजा करे, नर सह नार होए औतरे। तू कहियत ही आंध पवानी, मुक्त की वरिया कहाँ छपानी। गौरमत राम नाम गौ मीता, प्राण में नामा यो कहे गीता। बिलावल गौंड, आज नामे बीठल देखिया, मूर्ख को समझाऊ रे रहो।
पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लागत लागत जाती थी। पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया आवत देखा था, मोदी के कर खाना पाका वांका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आपत देखा था, रावण से ते सरवर होए कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहा ते ज्ञानी स्याणा, हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीत, नामे सोई सेव्या जय दहरा नाम मसीत। राग गौणी गौण बाणी रविदास जियो की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए वा, सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे, ताके सेवक कौ सदा आनंदे, रहो मुकंद मुकंद हमारे प्राणन, जप मुकंद मस्तक निसानन, सेब मुकंद करे वैरागी, सोई मुकंद दुर्बल तन लादी। एक मुकंद करे उपकार, हमरा कहाँ करे संसार, मेटी जात हुए दरबार, तू ही मुकंद जोग जुगतार। उपजियो ज्ञान हुआ परगास, कर कृपा लीने कीट दास, कौ रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहूं की गौंड। जे हो अठसठ तीर्थ नावे, जे हो द्वाद सिला पुजावे, जे हो कूप तवा तवा तटा देवावे, करे निंद सब व्यर्था जावे। साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहो। जे हो ग्रहण करे कुल खेत, अर्पे नार सिंगार समेत, सगले सिमरत सरवणी सुने, करे निंद कवण ही नहीं गुणे। जे हो अनक प्रसाद करावे, भूम दान सोभा मंडप पावे, अपना विगार विराना सांडे, करे निंद भोजोनी हांडे। निंदा कहाँ करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक सोध साध विचारिया, कौ रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली महला पहला, घर पहला चौप दे एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सभंग गुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा करता, कोई पढ़े पुराण, कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे त्याना। अभी कभी किछु न जाना, तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान सरन प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहो। कबू जीड़ा उब चढ़ते हैं, कबू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिरना रहते हैं, चारे कुंडा पाले। मरन लिखाए मंडल में आए, जीवन साजे माई, एक चले हम देखे स्वामी पाए बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का पाई, ना किसे बाप ना माई, प्राणवत नानक जे तुम देवे, आंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्व जोत तेरी पसर रही, जय जय देखा तै नर हरी। जीवन तलम निवार स्वामी, अंध कोप माया मन गाढ़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहो। जय पीतर कट पीतर वसिया, बाहर काहे नाही, तिन की सार करे नित साहिब, सदा चिंत मन वाही। आपे नेरे आपे दूर, आपे सर्व रया परपुर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जय देखा तै रया समाए। अंतर सहसा बाहर माया, न्याणी लाग सवाणी, प्राणवत नानक दास अंदासा, परतापेगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर बसे कवन दर कहिए, दरा पीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आण कहे। किन विद सागर तरिए, जीव त्या न मरिए रहो, दुख दरवाजा हो रखवारा, आसान देसा दोए पट जड़े। माया मल खाई पानी कर वाद्या, सत के आसन पुर करे, किंते ना मानत न जाने, तुम सर ना ही अवर हरे। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने आप करे, जब आसान देसा तभी क्यों कर एक कहे। आसा पीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले, इन विद सागर तरिए, जीव त्यों मरिए। रहाओ दूजा
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘੀ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਪਤ ਚੋਲੀ ਮੰਗਲ ਕੇ ਤਾਈਂ ਪਿੱਕਿਆ ਨਾਮ ਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੋ ਗੋਰਖ ਜਾਗੈ ਗੋਰਖ ਸੋ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ ਕਰਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਰਹਾਓ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪਵਨ ਬੰਦ ਰਾਖੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਮੁੱਖ ਦੀਏ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਧਰਤੀ ਦੀਨੀ ਏਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰਹਿ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕੀ ਅਰ ਜੋਗੀ ਚੰਗਮ ਪੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਰੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਸੇਵ ਕਰੇ ਕਾਗਦ ਲੂਣ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਸੰਗੇ ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਰਹੇ ਐਸੇ ਭਗਤ ਮਿਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਜਮ ਕਿਆ ਡਰੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਮਛਿੰਦਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬਸਗਤ ਪੰਚ ਕਰੇ ਨੈਂਡੂਲੇ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਜੋ ਕੋ ਪਾਲੇ ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਸੋ ਦੂਤ ਐਸੀ ਮਤ ਪਾਵੇ ਐਨਸ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਸਮਾਵੇ ਰਹਾਓ ਭਿਖਿਆ ਭਾਏ ਭਗਤ ਪੈ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਮੁੱਲੇ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਪਾਵੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਤਾਣੀ ਚਿਤਲਾਵੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮਛਿੰਦਰਾ ਉਹਦੋ ਸੇਨੀ ਸਾਣੀ ਆਸਾ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ ਬਣਾਏ ਨੇਚੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਪਾਏ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਅਗਮ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਦ ਮਿਲਾਏ ਦੇਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਪਰੀ ਹੈ ਪਵਣ ਲਗੇ ਮਤ ਜਾਈ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਧ ਪੇਟਣ ਕਹੁ ਆਏ ਨਿਹਚੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ ਦੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ ਹੋ ਤੁਝ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਿਆ ਰਹਾਉ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੋਗੀ ਅਰ ਜੰਗ ਮੇਕ ਸਿੱਧ ਜਿਨੀ ਤਿਆਇਆ ਪਰਸਤ ਪੈਰਸ ਜਿੱਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਖਰ ਜਿਨ ਕਵਾਇਆ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਪੇਟਿਓ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵੇਰਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤ ਰਲਾਈਏ ਰੇਤ ਤਨ ਕਰ ਤੁਲਨਾ ਲੰਘੇ ਜੇਤ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਤਿਸੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਐਨਸ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅਤਬ ਅਥਕ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨਿਰਤਰਾਏ ਜਿਤ ਦੀਵੇ ਸਭ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਰਹੋ ਅੱਛੀ ਮਿੱਟੀ ਸੋਜੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਮਾਨੇ ਸੋਏ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਚਕੋ ਟਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਿਭੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੋਏ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਏ ਤਿਤ ਘੱਟ ਦੀਵਾ ਨੇ ਚਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਮਰੇ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਏ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਰ ਤਰਾਏ ਡੋਲੇ ਭਾਉ ਨ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਜਾਪੇ ਜਿਉਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲੋਏ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਕੇ ਵੈਸ ਨਿਰਤ ਨ ਪਾਈਏ ਗਣੀ ਸੁਹੰਸ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰੰਗਤ ਹੋਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਧਨੋ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਸਾਚ ਪੇਟ ਬੈਸਣ ਕੌਥਾਉ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੀ ਪਾਸ ਨਾਨਕ ਵਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਐਸੀ ਦਰਗਹਿ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੋਤਾ ਕਰਮ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਦੇਵੇ ਮੰਗਤ ਜਨ ਚਾਓ ਭਾਂਡੇ ਪਹੁ ਪਵੇ ਤਿਤ ਆਏ ਤੁਰਤੇ ਛੋਡੀ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜਿਨ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਤਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹਰ ਰਾਏ ਨਾ ਕੋ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋ ਜਾਏ ਲੋਕ ਧਿਕਾਰ ਕਹੇ ਮੰਗਤ ਜਨ ਮੰਗਤ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੈ ਤੈ ਕਹਿਣ ਕਹਾਇਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਕਬਣ ਬੁਝੇ ਬਿਦ ਜਾਣੇ ਉਤਪੁਜ ਚਲ ਤਾਪ ਕਰ ਚੀਨੇ ਆਪੇ ਤਤ ਪਛਾਣੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਤਿਸਤੇ ਮੁਕਤ ਪਰਮਗਤ ਹੋਈ ਰਹਾਓ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਦਿਨੀ ਅਰੂਸਨ ਸੀਤ ਵਿਦ ਸੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ ਬੋਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਮਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਮਨੁਆ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੋ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਐਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਲਾਜ ਛੋੜ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਹਾਓ ਧੁਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਕੋਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਰਸ ਮੋਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਗੁਰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਰਾਤਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਜੈ ਤੈ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਤਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਿਸਾਰੇ
जय आप गया पौ पागा गुर चरनी सेव कलागा गुर सतगुर परम चुकाया को नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला साधन पूजन मांगत पांगे खुदिया दुष्ट जले दुखिया गए गुरमत नहीं लेनी दुरमत मत खोई गुरमत भगत पावे जन कोई जोगी जुगत सहज कर वासे एक दृष्टि एको कर देख्या भीख्या भय शब्द त्रिपता सह राओ पंच वैल घड़िया दे तहरी राम कला निबे पत सारी तर तोटी गाडो सिर पहार लकड़ी बिखर जरी मंझ पहार गुर कै शब्द विचार योगी दुख सुख सम करना सोग वियोगी पौगत नाम गुर शब्द विचारी अस्त्र कंध जपे निरंकारी सहज जंगोटा बंधन ते छोटा काम क्रोध गुर शब्दी लोटा मन में मुंद्रा हर गुर सरन नानक राम भगत जन तरण एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली महला तीजा घर पहला सतगुज सच सतयुग सच कहे सब कोई घर घर भगत गुरमुख होई सतयुग धर्म पैर है चार गुरमुख बूझे को विचार जुग चारे नाम वड़ियाई होई जे नाम लागे सो मुक्त होवे गुर बिन नाम न पावे कोई राहो त्रेते एक कल कीनी दूर पखंड वार त्यार जाने दूर गुरमुख बूझे सो जी होए अंतर नाम बसे सुख होए द्वापर दूजे दुबदा होए भरम पुलाने जाने दोए द्वापर धर्म दोए पैर रखाए गुरमुख होवे त नाम दृढ़ाए कलयुग धर्म कला एक रहाए एक पैर चले माया मोह बधाए माया मोह अत गुभार सतगुर पेटे नाम उधार सब जुग में साचा एको सोई समय सच दूजा नहीं कोई साचे कीर्त सच सुख होई गुरमुख नाम वखाणे कोई इस जुग में नाम ही उत्तम होई गुरमुख विरला बूझे कोई हर नाम त्याय भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम वड़ियाई होई राम कली महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जे बड़ पाग होवे बड़ पागी ता हर हर नाम त्यावै नाम जपत नामे सुख पावे हर नामे नाम समावे गुरमुख भगत करो सद पुराणी हिरदे प्रगास होवे लिव लागे गुरमत हर हर नाम समाणी राओ हीरा रतन जवे हर माणक बो सागर भरपूर किया जिस बड़ पाग होवे बड़ मस्तक तिन गुरमत कड़ कड़ लिया रतन जवाहर लाल हर नामा गुर कांड तली दिखलाया भागहीन गुरमुख नहीं लिया तृण ओले लाख छपाया मस्तक पाव होए तुर लिखया ता सतगुर सेवा लाए नानक रतन जवीहर पावे तन तन गुरमत हर पाए राम कली महला चौथा राम जना मिल पया आनंद हर नेकी कथा सुनाए दुरमत मैल गई सब निकल सतसंगत मिल बुद्ध पाए राम जन गुरमत राम बुलाए जो जो सुने कहे सो मुक्ता राम जपत सुहाए रहाओ जे बड़ पाग होवे मुख मस्त हर राम जना पेटाए दर्शन संत देव कर कृपा सब दाल दुख लै जाए हर के लोग राम जन नीके भाग हीण ना सुखाए ज्यों ज्यों राम कहे जन ऊचे जा नर निंदक डांस लगाए तिरग तिरग नर निंदक जन जन नहीं पाए हर के सखा सखाए से हर के चोर बेमुख मुख काले जिन गुर की पहज न पाए दया दया कर रख वर ज्यो मदीन तेरी शरण आए हम वारक तुम पिता प्रभ मेरे जन नानक बख्श मिलाए राम कली महला चौथा हर के सखा साध जानी के तनी ऊपर हाथ बतावै गुरमुख साध से प्रभ पाए कर कृपा आप मिलावै राम मुको हर जन मेल मन पावै अम्यो म्यो हर रस है मीठा मिल संत जना मुख पावै रहाओ हर के लोग राम जन उत्तम मिले उत्तम पद भी पावै हम डो होबत चेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खुशी करावै सेवक जन सेवे सेवड़ पागे रिद मंतन प्रीत लगावै बिन प्रीति कर बहु बातां कूड़ बोल कूड़ फल पावै मुको धार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगी लै पावै हो काटो काट वाड़ सिर राखो जित नानक संत झड़िया वै राम कली महला चौथा जे बड़ पाग होवे बड़ मेरे जन मिलद्या टहल न लाई है हर जन अमृत कुंट सर नीके बड़ पागी ते तनवाई है राम मुको हर जन कारे लाई है हर जन अमृत कूट सर नीके बड़ पागी ते तनवाई है
राम मुको हर जन कार लाइए हो पानी पक्का पीसो सांते आगे पग मल मल तोर मुख लाइए रहो हर जन बड़े बड़े बड़े उचे जो सतगुर मेल मिलाइए सतगुर जे बड़ अवर ना कोई मिल सतगुर पुरख त्याइए सतगुर सरन परे तिन पाए मेरे ठाकरे लांज रखाइए एक अपने स्वाहे आए बहे गुर आगे जो बगल समाध लगाइए बगला काग नीच की संगत जाए क्रंक बिखो मुख लाइए नानक मेल मेल प्रव संगत मिल संगत हंस कराइए राम कली महला चौथा सतगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लगो गुरचरणी जिन हर पर मार्ग पंथ दिखाया राम में हर हर नाम मन पाया मैं हर वे नवर न कोई बेली मेरा पिता माता हर सखाया रहा हूँ मेरे ककिन प्राण न रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया तन तन वड भाग गुर सरणी आए हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर न कोई सूझे बूझे मन हर जप जपो जपाया नाम हीण फिरे से नकटे तिन कस कस नक बढ़ाया मोको जग जीवन जीवाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम बसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम त्याया राम कली महला चौथा सतगुर दाता बड़ा बड़ पुरख है जित मिले हरि उर धारे जी दान गुर पूरे दिया हरे अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे गुरम कथा सुनिया मन पाई तन बड़ पाग हमारे रहो कोट कोट ते तीस ते आवे तंका अंत न पावे पारे हृदय काम कामणी मांगे रिद मांगे हाथ पसारे हर जस जप जप वड़ा वडेरा गुरमुख रखो और धारे जे बड़ पाग होवे ता जपिए हर पौ जल पारी उतारे हर जन निकट निकट हर जन है हर राखे कंठ जन तारे नानक पिता माता है हर प्रभ वारक हर प्रित पारे राग राम कली महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना विचारियो कोई माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गति ही मेरे मन सतगुर सेव सुख होई जो इच्छो सोई फल पाओ फिर दुख न ब्यापे कोई रहो काचे पांडे साज निवाजे अंतर ज्योत समाई जैसा लिखत लिखिया तुर करते हम तैसी किरत कमाई मन तन थाप किया सब अपना एहो आवन जाना जिन दिया सो चेतन आवे मोहे अंध लपटाना जिन किया सोई प्रभ जाने हर का महल अपारा भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा राम कली महला पंजवा पवो चरणा तल उपर आवो ऐसी सेव कमावो आपस ते ऊपर सब जानो तो धर गए सुख पावो संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलो गुरमुख वाणी राहु पर पंच छोड़ सहज कर वैसो झूठा कहो न कोई सतगुर मिलो नवे निद पावो इन विद तत् बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिवलावो आत्म चीनो पाई निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किस स्यों करो बुराई सतगुर मिलिए मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी तन तन से जन जिनी कल मैं हर पाया जन नानक सद कुरवाणी राम कली महला पंजवा आवत हर कन जावत दुखा नै ब्यापे मन रोगनी सदा नंद गुर पूरा पाया तो उतरे सगल वियोगनी इबिद है मन योगनी मोह सोग रोग लोग न ब्यापे तै हर हर हर रस भोगनी रहो स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा प्याल पवित्र लोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पूंजे जत कत पेखो हर गुणी नै शिव शक्ति जल नहीं पवना तय आकार नहीं मेदनी सतगुरु जो कथा निवासा जय अभिगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गणी कौ नानक हम तुम गुर खोई है अबे अब मिलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रहे निरारे साधक सिद्ध न जाने रतन कोश अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने अचार्य कुछ कह न जाई वस्त गोचर पाई रहो मोल नहीं कुछ करने जोगा क्या को कहे सुनावे कतन कहन को सोजी नहीं जो पेखे तिस बने आवे
सोई जाने करने हारा कीता क्या विचारा, अपनी गत में ते आपे जाने हारे आपे पूर पंडारा। ऐसा रस अमृत मन चाख्या तृप्त रहे अघाई, कौ नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरणाई। राम कली माला पंजमा अंगीकार किया प्रभु अपने, बैरी सगले साधे इन बैरी है ये जग लुटिया ते बैरी लै बाधे। सतगुर परमेसर मेरा अनक राज भोग रस माणी, ना उन जपी परवासा तेरा रहो। चेतना अवस दूजी माता सिरे ऊपर रखवारा, बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम है आधारा। पूरन होए मिलो सुखदाई ऊन न काई बाता, तत् सार परम पद पाया छोड़ न कत हूं जाता। वर्ण साको जैसा तू है साचे अलख अपारा, अतोल था डोल स्वामी नानक खासमा हमारा। राम कली महला पंजमा तू दाना तू अब चल तू ही, तू जात मेरी पाती तू डोल कद डोले नाही, ता हम कैसी ताती। एक है एक है एक तू ही एक एक तू राया, तो कृपा ते सुख पाया। रहाओ तू सागर हम सांस तुम्हारे, तुम मैं माणक लाला। तुम देवो तिल सांक न मानो हम पूंजे सदा निहाला। हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा। हम खेले सब लाड़ लड़ावे तुम सदगुणी गहीरा। तुम पूरन पूर रहे संपूर्ण, हम भी सगल अघाए संग अघाए। मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली महला पंजवा कर कर ताल बवाज, नैणो माथे बजे रवाबा। करनो मधवा श्री बाजे जे वा तना गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे आगे कुंगर साजा। राम को नृतकारी पेके पेखण हार दे आला, जेता सा सिंगारी रहो। अखार मंडली तन सभाई ऊपर गगन चंदोआ, पवन बिचोला करते केला जलते ओ पतोआ। पंच तत् कर पुत्रा कीनी किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दो जरे चरागा चौंकंड पीतर राखे। दस बातु पंच संगीता एक एक है पीतर साते, पिन पिन होए पाव दिखावे सबना रारी पाखे। कर कर नृत होवे दिन राती कट कट वाजे तूरा, एक नचावे एक पनावे काए जाए हुए तूरा। कौ नानक सो बहुर न नाचे जिस गुर पेटे पूरा। राम कली महला पंजमा ओ अंकार एक तुने कहे के राग लापे, एका देसी एक दिखावे एको रहा में आपे। एका सुरत एका ही सेवा एको गुर ते जापे, पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के तंद सोआओ। रहाओ पंच विजेतर करे संतोखा, सात सुरा लै चाले। माजा मान तान तज ताना पाओ न बीगा काले, फेरी फेर न होवे कावे एक शब्द बंद पाले। नारदी नार हर जान हदूरे, कौंगर खड़क त्याग विसूरे। सहजानंद दिखावे पावे इहो नृतकारी जन्म नावे, जे को अपने ठाकुर पावे कोट मद इहो कीर्तन गावे। साध संगत की जा मोटेक कौ नानक तिस कीर्तन एक। राम कली महला पंजमा कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसाइयां कोई अल्हाए। कारण करन करीम कृपा तार रहीम, रहो कोई नावे तीरथ कोई।

की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वड भागी पाईऐ संत की सेवा नाम ते आईऐ नाम तुल का शबर ना होए नानक गुरमुख नाम पावे।

जे प्रसाद पिख बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है।

ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी कांत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलो

0: पंडित को सदा
1: देशन करण
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहु वरना में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए
1: अनेक पातक हर
0: साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतारे पास प्रेत मुक्त पाथर को तारे सर्व रोग काय उपद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गावे
1: अज्ञान गुणों पर्वत पर्वत पर जंत आकाश

कबीर गर्भ न कीजिया देही देख सुरंग आज काल तज जाऊंगे ज्यो कंचूरी पयंग।

कबीर धरती आकाश में दोए तो वरी आव दो खड़दर्शन संसे परे आर्च रासी सद कबीर बेरा मुझ में कछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते।

मुख को थरी पार खुआ के फूल, कोई आए मेरे दो कहा कि ले गो महंगे मोल। कबीर राम नाम जानो नहीं, पायो कटक कट।